सतगुर होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कब हों झूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानी है, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं माणदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोतों लई खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: फैशन IQ, फैशन IQ, लेटेस्ट डिजाइन, ट्रेंडिंग आउटफिट्स,
1: लेडीज सूट, लहंगे, गरारे, शरारे,
0: कुर्ते, पजामे, शेरवानिया, कोट पैंट, ब्लेजर अते किड्स फैशन।
2: दरियावां तो
3: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारिया तो सोना हो भी।
4: बस इनी गल हो कार।

0: हम कंगोड़े में से सागा नंबर 6472620000 एंड होम फॉर हेज
1: डेढ़ बैंड फायर नीचे दलाना बलिए
2: की तुसी रोजाना दी पज दौड़ अते स्ट्रेस तो मुक्ति चाहते हो की तुसी लब रहे हो एक अजिही जगह जिथे तुहाडे शरीर अते रूह नूं मिले सुकून ता हुण इंतजार खत्म ब्रैम्पटन विच खुल गया है लिवाना वेलनेस स्पा साडे तजर्बेकार अते प्रोफेशनल थेरेपिस्ट्स 100% हाइजीन एनवायरमेंट अते एडवांस्ड इक्विपमेंट्स दे नाल तुहाडी सेवा लई हाजिर हन साडियां खास सर्विसेज रिलैक्सिंग अते मसाज थेरेपी प्रीनेटल अते पोस्टनेटल ग्लोइंग हाइड्रा फेशियल लेजर हेयर रिमूवल अते बॉडी कॉन्टोरिंग अते हां इंश्योरेंस बेनिफिट्स वाले ग्राहकां लई डायरेक्ट बिलिंग दी खास सुविधा भी उपलब्ध है ता देर किस गल दी अज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो पता 534 पार्कहर्स्ट स्क्वायर ब्रैम्पटन फोन नंबर 416-811-5385 लिवाना वेलनेस स्पा जो रखे तुहाडी सेहत अते सुंदरता दा

0: बाबा शुक्रिया जी रेडियो
1: टॉयलेट जरूर वरतांगे इसलिए हुणे कॉल करो असी वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी शायद
2: अपने परिवार दी रक्षा करो सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओ ईएसए परमिट हासिल करन होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी ते सजन दियां खुलियां बाहां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी, मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी। आओ इस दी शान वधाइए, इहदे सोले रलवे लगाइए, क्योंकि बोली ना रही तां कवितावां रुल जाणियां, मावां दियां लोरियां दवावां रुल जाणियां। एडे महंगे मुल वाली चीज ना गवा दियो, वेखियो पंजाबी ओ पंजाबी ना भुला दियो, वेखियो पंजाबी ओ पंजाबी ना भुला दियो।

0: आमे पूवंदर गद गाल माए।
1: बहुत वधिया बॉबी, बहुत वधिया।
0: मेरे मुड़ने भी नहीं मजाल माए, ताइयों जग

जेड़ा पंछी यार बनाया चूरी कुटा ते ओ खांदा नहीं ओनू दिल दा मास खवाया होई की उडनी नी ओ ऐसी उडया।

0: रहा ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साथ संगत दे सब पल पाए सतगुर के बल जाई हलत पलत प्रभ रोवे सवारे हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया
1: अच्छा ना। देश की गल कर लेते हैं दिल का दहता ही

ताप छोड़ गया परवार, गुरपुरा है राखी सन सच्चे की ताकी, परमेश्वर आपको आदत वाला सात सहज सुख किन मह उपजे, मन हुआ सदा सुखाला रहा हो। हर हर नाम दियो दास तिन सगला रोग निदारो, अपनी कृपा तारी तिन सगली बात सवारी, प्रभु अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण न बिचारिया, गुर का सबद भयो साथी तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा तू साहेब पुनी गहरा, जब नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज राखी।

गए सगले सुख पाए, गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान रहाओ। अखत कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जब जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, साथ पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। ताप पाप संताप बिना से, हर सिमरत किल विक सबना से, अनहद करहो मिल।

विश्वं विष्णुर्वशंकरो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अप्रलयपुर अस्य श्रीबुधकवच स्तोत्र।

नारायण ऋषि अनंतम छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम।

0: अच्छा मानो दोपहर बेडिंग स्टोर
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और माना।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम है, लॉन्ग वीकेंड है। अभी आप जानते हो कि आपके लिए अभी अगस्त का महीना गया है, तो अभी साल ऐसे हाथ से कैसे सरकता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो बहुत सारी अचीवमेंट कर ली हैं। अभी तो कुछ महीने, 4-5 महीने बाकी हैं, फिर भी आपने बहुत सारी अपनी जो योजनाएं थी उनको पूरा कर लिया है और आपने उनको पूरा फुलफिल कर लिया है। ये आप पूरी तरह से समझते हो, जानते हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और उसको बढ़िया तरीके से अपने वक्त को आप आगे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये ज़िंदगी में सबसे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सभी शहरों में बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं सिविक हॉलीडे की। फायरवर्क्स तो होगा ही होगा ना, ये तो आपको मालूम ही है कि फायरवर्क्स होने वाला है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और ज़िंदगी का लुत्फ उठाइएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपका मन चाहे, तो उसी तरीके से आप एंजॉय कीजिएगा अपना वक्त जो है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीते हो, अपने टर्म्स में जीते हो, उसका जो जीने का मज़ा है ना, वो अलग ही है। और उसमें आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने टाइम की वैल्यू की, दूसरों के टाइम की वैल्यू की और आप ज़िंदगी को एक बढ़िया तरीके से जिए हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से जिए हो और आगे बढ़ने के लिए जिए हो और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चले हो। दूसरों को साथ लेके आगे चलता है कोई कोई, अपने लिए तो सब भागते हैं। जो दूसरों को साथ लेके चलता है उसको उसकी अपना ही अलग ही, उनको ही मालूम है जो ऐसा करते हैं और उनको ही मालूम है कि उसका क्या मज़ा है। तो आइए इन्हीं विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और आपको बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया लेटेस्ट गैजेट चाहिए किचन के लिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर आपको

अब टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अपनी बहन को टीवी लेके देना चाहते हो, गिफ्ट लेके देना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, और फिर आप कॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 905-799-0045 पे आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक को कॉल कर सकते हो। अब जब आपने घर लेना है तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीबखिंड को, 519-546 1260 किचनर वाटरलू ब्लॉक में। अगर आपने कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीबखिंड को। जी हाँ, नसीबखिंड आपको बहुत बढ़िया डील लेके देंगे। और जानकारी के लिए 519-546 1260 आप कॉल करो। अब आपने घर ले लिया, आपको मूव तो होना ही है, तो एच के मूवर्स आपकी पूरे कनाडा भर में मदद करने की कोशिश मदद करते हैं, कनाडा भर में आपको मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए एच के मूवर्स। एच के मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो, तो आप 416-524-604 पर आप एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हो। अगर आपने फूड ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है और न्यूली रेनोवेटेड है, आप उनको कॉल कीजिएगा 905-814-1730। ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, आपके लिए मौजूद हैं मिसिसागा में, ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे। तो अब आपके लिए गाना तो एक बढ़िया सा बनता ही है ना, तो जरूर गाना सुनाएंगे। पर आपको बता दें कि अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको कुलीजन का काम करवाना है, तो आपके लिए मास्टर कुलीजन डिपो लंदन में मौजूद है गोर रोड पे। तो आप उनको कॉल कीजिएगा और जानकारी के लिए, और कुलीजन का काम बहुत बढ़िया करके देंगे। तो ये हैं आपके लिए मास्टर कुलीजन डिपो। तो आप मास्टर कुलीजन डिपो .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं लता जी का। लता जी तो हमेशा के लिए फॉर एवर हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल लता जी सॉन्ग। पंजाबी के गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, आपको उनका पंजाबी का गीत भी जरूर तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे। पर पहले आपको ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना।

हाँ जी, आप सुन रहे हो प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव है, पर आई जस्ट वांट टू हैव थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए, तो आइए आपको ये रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आप वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो बताना, जिनके बर्थडेज हैं, बहुत शादियां बहुत होती हैं इस वीकेंड में, तो अगर आपके शादी हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है झारखंड सर में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। प्रोग्राम घंटा और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो चलो अभी आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे का होने की बात होती है, इसी में बस गाने में यही बताया गया है। बड़ा रोमांटिक सा है। वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, तो सुनते हैं अच्छे अच्छे गाने।

या एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मीरा शर्मा। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, लोटस टीवी आपको चाहिए, या फिर आपको आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, किचन गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देख सकते हो। फिर आपने अगर ऑर्डर बुक करना हो तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए मूविंग की पूरी सेवाएं आपको एचके मूवर्स देते हैं कनाडा भर में। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-7604 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है अब। और बहुत सालों का उनका तजर्बा है, आपका कोलिजन आपकी कार वैन ट्रक को नए जैसा बना देंगे। आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको मूविंग करनी है तो आप एचके मूवर 416-524-7804 पर कॉल कर सकते हो। और लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा आपको। और राखियाँ लेनी है आपको इंडिया सजावटन पूजा हट पे जाइएगा। तो लीजिए, सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: आत्मा की आवाज के बारे में जब बात की जाए तो हम लोग ज्यादातर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, वही अंदर जो आपके भगवान बैठा है उसी की आवाज होती है वो। तो अगर तो आप अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो फिर आप दुनिया को भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो उसमें बहुत ही मज़ा है। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो आइए, इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पान इस वादा पला है, वंडरफुल डे। और रात को हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो मैंने एक पोइम लिखनी शुरू की है, तो अभी मैंने पहली दो लाइनें लिखी हैं, तो आपको ये साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी की पोइम अभी मुझे लिखनी है, मैं पोइम्स लिखती हूँ। तो मैंने जो पहली दो लाइनें लिखी हैं कि आई लाइक टू डांस व्हेन आई गेट ए चांस, आई डांस विद वुल्व्स, लायंस, lionesses and of course pigs. Yes, pigs. I dance with pigs. And
1: this is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

नाम तेरा कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही अपने शो रेडियो आवाज़ ते। आओ अज दा दिन असी शुरू करिए प्यारियां प्यारियां गल्लां दे नाल।

0: Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी हां ब्रो फूड वाज अमेजिंग फ्रेश हॉट ते फुल टेस्ट वाला गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए सर्विस भी टॉप नॉट सी टाइम ते डिलीवरी प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी करीज रोटी राइस एवरीथिंग वाज परफेक्ट ऑनेस्टली असी ता हुन हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
2: ਭੈਣ ਜੀ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ
4: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਉਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੁਵੇਡਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699
5: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस तुहानू डेट नू प्रॉपरली असेस करन मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200
6: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मानता चैंपियन इन पराठा मार्केट
0: जो की मिल रहा है 2410 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स 905-451-2600 905-452-2600
7: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले उसमें से एक भी मैच नहीं हारे
6: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा चैंपियन इन पराठा मार्केट
0: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स 905-451-2600 905-452-2600 याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
8: ड्राइव कर रहे हो शोनो एंजॉय कर रहे हो कुछ भूल रहे हो
9: ड्राइविंग लाइसेंस
8: नो
9: पुलिस ऑफिसर
8: नो नो
9: ट्रैफिक लाइट्स
8: नो
9: देन
10: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना
12: पापा पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
13: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
14: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
15: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज

0: इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है ते इतिहास ना जुड़ना बहुत जरूरी है। ते इतिहास ना जुड़ोगे जिन्या मर्जी आईटियां शाइटियां कर लो, जिन्ने मर्जी वड्डे इंजीनियर बन जाओ, जिन्ने मर्जी तकड़े डॉक्टर बन जाओ। गुरु रामदास पिता ते साढ़े शहीदां दी अगर गल चलती है, साड़ियां कुरबानियां दी गल चलती है, लगता कि इसका है ही कुछ नहीं गे। इसलिए महाराज की कृपा ते अज शेख साधी जदों नमाज पढ़ के उठता, नमाज पढ़ के जब बाहर जान लगता ना, तो बाहर जान लग्या की देखता कि मौलवी खड़ा अज बाहर, कहिंदा कोई शेख आया सी, कहिंदा जुत्ते ने बड़े जबरदस्त बनवाए ने, मैं
1: जी
0: कोई दुआ मंगी सी, ये उन्हों दई जो इन्हों डिजर्व करता, कि मैनू लगता शेख साधी सादिक तू इन डिजर्व करना, यानी कि तेरे ये काबिलियत दे विच ने, ये जुत्ते तेरे लिए ने। ते अज शेख साधी जार जार रो पैंदा हैगा खुदा दी इस बख्शिश नू देख के, कि बस इन्नी क दूरी सी। बाबा बोले शाह नू कोई पुछदा रब नू पाउणा, वह कहिंदा रब का की पाउणा, इधरों चक्या इधर लाउणा, तू ही रब आ, तेरी अख ना देखण वाली, तेरी अख ना देखण वाली है ना, तेरी अखी नहीं देखण वाली, रब तो तू ही आ। रब मारता मंदरां च नहीं है, ताही मस्जिदों के बाहर खड़ते नमाज पढ़ते कहना 24,000 नमाज इसकी, तू पंज किदियां पढ़ता, बुले शाह का एक ही मणका, मौला ही मौला करता, मौला ही मौला करता। सो 24,000 नमाज, 24,000 साह ही मेरे नमाज ने, तू पंज किदियां पढ़ के माण करदा बाबा बुले शाह। और डेढ़ो बात दसो जी, आप होरे पासे तुर गए। हाँ जी
1: 5 अप्रैल
0: वो भी खुब गए, मैं भी खुब गया। हाँ जी है क्यों चले गए, मैं भुल गया, तुम भुल गए। हाँ जी
2: चलो महाराज की बाणी
0: ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ,
1: ਅਪ੍ਰੈਲ 5 ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ
0: ਅਪ੍ਰੈਲ 5? ਹਾਂਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
0: ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
0: ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੁਛ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ, ਕੁੜੀਓ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ?
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
0: ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ,
1: ਨਹੀਂ
0: ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਗਈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
2: ਜੀ ਜੀ।
0: ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ?
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ।
2: ਲਾਲਚ
0: ਤੇ ਕਾਬੂ, ਚੰਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। 905-600-7333 ਬਾਬਾ ਬਖਤੌਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ 9056733337 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ

0: संतोष जी आवाज की है
1: हंसराज हंस। हाँ जी,
0: मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूंगा। संतोष जी ने भोले ना समझो, इन्हों का जन्म बंगाल च होया
1: जी,
0: ते पंजाब तो बाहर बहुत चिर रहे ने
1: जी, बिल्कुल,
0: ते उत बाद फिर लेट पंजाब च गए ने
1: जी।
0: बस ये मेरा डिस्क्लेमर है। ते ए सिंगर हंसराज हंस है ना?
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: हंसराज हंस। संतोष जी ने दस्सो।

0: मैं आपसे पूछता हूँ भाई और बहनों, हंसराज हंस, क्या आपने आवाज पहचान लिया? संतोष जी नु मर्जा हंसराज हंस बारे दस दो कि इस सिंगर कौन है इन्होंने मुताबिक हंसराज हंस। मैं संतोष जी इन्हों के बराबर समझता, अन्ना ये सिंगर कौन सा है बता देंगे?
1: नहीं मालूम पाजी,
0: नहीं मालूम पाजी, आपने ऐसा बोल दिया, पर इसने तो हंसराज हंस सोच के बोला है। 905-673-3333।

0: सुबह समय में नाल रैमी, रैमी की हाल चाल ने?
1: चल सारे
0: सत श्रीकाल रैमी, चलते हैं थोड़ी आवाज के वाल। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान दे विच रैमी दी आवाज है। जदों ये हौली जी मलक दे के चुंडी वड़दे साडे ते साडे सारे दे कन्न खड़े होंदे है। एमी हो सकता पाजी डील कितने डॉलर दी? पहले बोल दो बाकी मैं बोलूंगा।
2: आई एम ईगरली वेटिंग क्योंकि मैं चेंज
1: कर। डॉलर दी डील है?
0: हां जी
1: 30 डॉलर।
0: 30 डॉलर दी नमी आ गई?
1: हां जी।
0: ओ दूजी है क्या कि नहीं जेड़ी सेट कंट्री में तो मैं बदलना सी नंबर?
1: ओ मोगी सर,
0: माय गॉड। 30 डॉलर चार्ज किया दस्सो मर जा।
1: 30 डॉलर जी जी दो मुल्क ने जी तुसी कहंदे हो कोई टैरिफ नहीं लगना, कोई ट्रंप नहीं रोकना, किथे चल जाओ कनाडा रो अमेरिका रो। 30 डॉलर दा पैकेज 100 GB डेटा कैनेडा ते अमेरिका, उत्तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, स्टोर ते 25 डॉलर दी फीस देनी आ। ते 30 डॉलर पैकेज कोई बिजनेस चाहिए दा, कोई चार लाइन नहीं चाहिए, उत्तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैगा।
0: चलो मर्जी बंद कर दो।
1: हाँ जी
0: 30 दे विच तुसी सानू पागल समझा, थोड़ी लाइन लेके असीं बंद करांगे।
1: बिल्कुल सही कह रहे, 30 डॉलर कुछ नहीं मिलदा अजकल।
0: सो नंबर टू कॉल हैगा, ए जिहड़े वर्जन ते बैल दे नेटवर्क दे उप्पर डील्स हैगियां ने। चार सौ सोलह चार सौ तरवंजा

0: क्रेडिट चेक, और अगर आप हाउस वाइफ है, उबर ड्राइवर है, चाहे आप फुल टाइम जॉब करते हैं, आप एलिजिबल है पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन।
1: सो पीआर सिटीजन होने चाहिए थे, इनकम दी की उधर हो जी।
0: अब ये भी खुशखबरी है, इनकम पहले हम जोर लगा के कहते थे कि आपके एनए की फैमिली इनकम लेस देन $70,000 हो, अब ऐसा नहीं है। आप चाहे 1.5 लाख साल का कमाते हैं, आपको पता है
1: अच्छा,
0: हमारे पास पहले 10 कॉल आती थी, उसमें से हम सिर्फ 1 या 2 ही हमारे लायक के क्लाइंट थे जिनको सूट करता था, बाकी सब हाई इनकम के थे। बट अब आपकी इनकम 1.5 लाख भी है तब भी आप 1.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं 0% पे, बिना क्रेडिट चेक के, बिना किसी पर्सनल गारंटी के।
1: वेरी गुड। सो नागपाल जी, मैं सही समझ रहे हैं, जे इनकम हो नॉर्मल जी और इनकम है वो 70,000 लाख की आ एवरेज बंदे दी, ते तुसी कह रहे हो जे साल दी इनकम $1.5 लाख भी है, फैमिली इनकम $1.5 लाख तो घट आ जा $1.5 लाख तक आ, इंग्लिश आउंदी आ, पी आर ते सिटीजन ने जिहदे विच तां बहुत वड्डी लॉबी है जो इस दे विच आउंदी आ, ते ओह सारयां नूं लख 1.5 लख 2-2 लख दे लोन मिल रहे ने बिना क्रेडिट चेक तों, बिना कोई गरंटी तों। ओके, इक एग्जाम्पल दिओ जे फैमिली ऑफ 4 आ जी, कोई ओहदी एग्जाम्पल दिओ ते उहनां नूं किन्नी फंडिंग बनूगी ते किवें आउंदी आ फंडिंग।
0: हाँ जी, फैमिली ऑफ 4 को हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, आसान से कोर्सेज करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, तो 2 साल के कोर्स में उनको बनता है $160,000। अब इसमें से अगर फैमिली ऑफ 5 है तो बढ़ भी जाता है $170,000-$180,000 तक चला जाता है। अब इसमें बच्चों के अगर उनकी एज कम है 11 साल से तो उनका कॉलेज का जो फीस का पोर्शन है वो गवर्नमेंट ही कवर कर देती है, जेब से कुछ नहीं गया, लोन का लोन आ गया।
1: ओके,
0: बच्चे छोटे हैं तो ज्यादा फायदा है, नहीं छोटे तो भी बड़ा फायदा है। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आप मान के चले आपका कोर्स 2 साल का है तो 2 साल तक ये 0% पे है, कोई ब्याज ही नहीं है,
1: तो ना ही कोई भरने की लोड़ है, कोई किस्त भी नहीं।
0: बिल्कुल जी, किस्ते भी स्टार्ट नहीं है, किस्ते भी 2.5 साल बाद स्टार्ट है।
1: ओके,
0: और तब ब्याज क्या है 2.5% पूरे साल का, महीने का नहीं कह रहा, 2.5% पूरे साल का, और गारंटी नहीं, सबसे बड़ी बात।
1: मतलब जो लाख किसी ने लेता तो उन्हें मोड़ना कितना हुआ,
0: आप मान के चले लाख लिया तो 1,10,000 15 साल में मोड़ना है, $10,000
1: मोड़ना एक्स्ट्रा 15 साल।
0: बिल्कुल जी, 15 साल के आराम से ओपन है, आप 3 साल में मोड़ दो चाहे 15 साल में मोड़ो, ऐसा भी नहीं आपकी जॉब ही लगी तो आपको उठा के ले जाएंगे, क्योंकि गिरवी क्या है, ना घर है ना गाड़ी है, तो बस आपका लोन डेफर हो जाता है।
1: जो पैसे आते हैं लोन वाले स्टडी के अराउंड ही खर्च करने होते हैं,
0: लिविंग एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट आपको देती है, कहीं भी कैसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट ने $900 मिलियन और दे दी यूक्रेन को, गवर्नमेंट जब वहां पैसा लगाती है आप पे लगा रही है, तो चाबी क्यों है, कोई चाबी नहीं, कोई मीठी बातें नहीं है, कॉल करें, असेसमेंट अभी कराएं।
1: सो कॉल दे उत्ते इन्हां ने दस देना दोस्तों, तुसी एलिजिबल हो, एलिजिबल तो होवोगी, पीआर सिटीजन नंबर 1, एज का कोई फैक्टर नहीं है, बस पीआर सिटीजन होने चाहिए हो, नंबर 2 इनकम 1.5 लाख जां इस तों घट, नंबर 3 जिहड़ा हैगा, नंबर 3 की सी, इंग्लिश हो गया, इनकम हो गया, ते पीआर ते सिटीजन हो गया। सो यही 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने, तुसी लोन दे हकदार हो सकते हो। करना की है, गवर्नमेंट चाहती है कि तुसी पढ़ो, ते पढ़ाई दे लई वेल्डिंग वर्गे औखे कोर्सा तो लैके अजिहे सौखे कोर्स भी ने जिहड़े जिन्हां दे कोई टेस्ट भी नहीं होने, मोबाइल देखते देखते ही अटेंडेंस तुहाडी लग जाणी है, ते सिंपल जी असाइनमेंट ने, कोई टेस्ट भी नहीं हो जाने जिहड़े बड़ा आसानी नाल पास कर सकते हो। एंड नागपाल जी, तुसी आपदी फीस तो नहीं बढ़ाती?
0: अभी नहीं बढ़ाई जी, फीस हमारी सेम ही है, फीस $199 वन टाइम फीस काम होने के बाद,
1: जो लोन अप्रूव हो जाएगा खात्यां च $1,00,000 आ जाएगा, तुहानू 199 दे देने,
0: बस दैट्स इट, कोई हिडन फीस
1: बता दो 1199 कर दे नू।
0: उल्टा जब आपको पता है लोगों को जब कुछ कोई चीज छीन के मिलती है ना, छीन के नोच के, तब उन्हें लगता है मजा आ गया, जो अच्छी तरह काम करते हैं हम पे शक होता है। जब आपको रिफाइनेंसिंग मैंने लोग आगे कहते हैं काम हो जाता है तो कुछ और शुरू करो, मैंने कहा बाकी सब काम नकली कागज लगते हैं, हम तो करते नहीं है भाई, साफ काम साफ तरीके से 8 साल से कर रहे हैं, असली काम है, कोई कागज नहीं हिलता आपके इसमें, आपके फैमिली कागज लगते हैं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट, ना कि एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट। कॉल करें अभी, असेसमेंट कराएं फ्री में।
1: लो जी, राइट नाउ कॉल करो, ते ऑफिस का एड्रेस भी दस दो एक बार।
0: हाँ जी, ऑफिस एड्रेस है जी 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरंटारी डेरी पे, मंडे आप आ सकते हैं, कोई कुंडी कोई चाबी कोई मीठी बातें नहीं है।
1: नंबर बोल दो जी,
0: 437-264-3175। क्रेडिट स्कोर 0 भी है तो भी आप एलिजिबल है, 437-264-3175। 75।
1: ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਆਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਨ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175 ਕਾਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਮਿਲੋ, ਦੋ ਚਾਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ? 199। 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
1: ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ।
2: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ 6085 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6685 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁਮਾ ਲਓ ਤੇ ਰਿਕਲਾਈਨਰ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਦੀ ਡੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਹੀ ਸੈੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਐਕਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੀਲ ਆ। ਰਿਕਲਾਈਨਰ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, 3 ਸੀਟਰ ਸੋਫਾ, 2 ਸੀਟਰ ਲਪਸਿਡ ਸੋਫਾ ਐਂਡ ਲਪਸਿਡ, 4 ਰਿਕਲਾਈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਡ, ਜਿਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $2,2500 ਸੀ। 5 ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, 799 ਦਾ ਰਿਕਲਾਈਨਰ ਸੋਫਾ ਐਂਡ ਲਪਸਿਡ, 799 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ, ਡਰੈਸਰ, ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ, ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਂਡਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ, ਡਰੈਸਰ, ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ, ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $1,500-1600 ਸੀ। 599 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ, ਡਰੈਸਰ, ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ, ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, $599 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6472600000, 647-262-0000, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ 6085 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6685 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ, ਡੈਰੀ ਟੋਮਕਨ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਈਵੇ 410 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6085 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ, 6685 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ ਭਾਜੀ।
3: The Must Societe clearance sale is on August 6th to 10th. Save up to 70% on furniture and decor from Must Societe and Jardin de Ville. 5 days only, 1270 Caledonia Road in North York, while supplies last. This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.

0: सांझा नु जुए परिंदे अपने घर मुड़ आउंदे ने।
1: शिफ्टा ते जद वतना तो दूर याद अपने फेर तो आउंदे ने।
0: कोई है जो करदा है तुहाडी मां बोली विच तुहाडे दिल दीआं गल्लां,
1: पंजाबी गीतां नाल रौनका लगा के तुहाडे कम दीआं गल्लां,
0: वखरा टंग वखरा रंग,
1: रेडियो जीदा वखरा अंदाज,
0: सो चज्जी जीवन शैली दी गल करता तुहाडा अपना रेडियो, रेडियो अंदाज,
1: रेडियो अंदाज।
0: सुनो अपनी होस्ट परम कौर दिना, नंबर टू कॉल 647-234-6000।

0: मौसम ठीक ठाक है जी। अगस्त 8 हो चुकी है, 28 डिग्री टेम्परेचर, पर फील्स लाइक 35 डिग्री। थोड़ी जी हुमस ज़्यादा हैगी आ। मी तो वैसे दस रहे से भी अज भी मीह पेगा, कल काफ़ी जोर दी तेज़ मीह पिया। सौन का महीना चलता है तो सौन की झड़ी की आप गल करते होंने, या फिर सौन च जड़ा मीह पैंदा तो वह तो फिर सारे साल के नालों ज़्यादा ही होंदा। तो जी मौसम ठीक ठाक है, कल नू भी 28 डिग्री आ, तो मंडे भी 28 डिग्री आ, ट्यूजडे 27 आ, तो फिर वैनसडे भी 27 आ। सो आने वाले दिन, आने वाले जड़ा पूरा वीक आ, वह बड़ा खूबसूरत मौसम थोड़े लैके आ रहा। तो कोशिश करनी चाहिए है जी सानू कि जिंदगी जो सानू हर रोज़ मिलता है उन्हों इंजॉय करिए, परमात्मा का शुक्र करिए, जिन्ना भी कुछ मिल गया उस लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि जे रब सानू इन्ना भी ना दिंदा तो फिर की कर दे, फिर भी कुछ नहीं कर सकते सी। सो जिन्ना सानू मिल गया उस लिए शुकराना बड़ा जरूरी है। तो जी नाल दी नाल थोड़ा थोड़ा अपने विच बदलाव बड़ा जरूरी है। सो थोड़े नाल साडी गलबात 7:45 तक होनी है जी। 7:04 हो गए, सुनाओ की हाल चाल ने। मैनू लगता है, मैनू आस है कि तुसी सारे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपनी जिंदगी नू बहुत खूबसूरत ढंग नाल मैनेज करन दी कोशिश कर रहे होंगे, ते जी उस दे विच तुसी कामयाब भी हो रहे होंगे। सो गैस प्राइसिस भी घट गईयां, थोड़ियां जिहियां राहत किते ना किते मिली आ, ते कुछ ना कुछ चंगा हो रहा हर रोज़। तो उसकी गलबात आप करा के प्रोग्राम दे विच 416-233-7368 416-233-7368 ते कॉल की जा सकती है जी। तुसी सुन रहे हो रेडियो अंदाज, मैं थोड़ी होस्ट परम थोड़ा साथ दे रही हूँ। प्रोग्राम दे विच तुसी अपने बिजनेस नू एडवरटाइज़ करना हो जी, तो ज़रूर थानू जी आया नू मेरा फ़ोन नंबर 647-234-6000 नंबर से तुसी गलबात कर सकते हो। 647-234-6000 647-234-6000 नंबर से तुसी अपने बिजनेस नू एडवरटाइज़ करना हो जावा, प्रोग्राम दे रिगार्डिंग कोई गलबात कोई सुझाव थोड़े कोल हो जी, जरूर तुसी कॉल कर सकते हो 647-234-6000। थोड़े नाल साडा साथ 7:45 तक रहेगा। सो साथ दिंदे रहना जी प्रोग्राम दे विच, इदां ही गल्लां बातां थोड़े नाल चलदियां रहणगियां।
1: ओ अज तां कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी उदों ही बणू जदों नवे अपलायंसेस आउणगे। मैं गया लाइनिंग गल, उसे वेले गड्डी चक्की ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस दे मूहरे ले जा खड़ी करती।
2: जी हां, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नू एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अपलायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी, 905-450-2888।
3: क्या बात है, बड़े परेशान बैठे हो।
4: क्या बताऊं यार, ऑटो एंड होम इंश्योरेंस रिन्यूअल आई है, फिर इंक्रीज हो गया, क्लीन रिकॉर्ड है, फिर भी हाई प्रीमियम हर साल पे करना पड़ रहा है।
3: बस इतनी सी बात, अभी फोन करो कुलविंदर गुलेरिया को जो 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं और तुम्हारी होम, ऑटो और बिजनेस इंश्योरेंस प्राइस चेक करके ऑनेस्ट एडवाइस और बेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकते हैं।
4: थैंक्स दोस्त, तूने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी।
3: यदि आप भी अपनी ऑटो, होम, बिजनेस, लाइफ या ट्रेवल इंश्योरेंस के बेस्ट रेट और प्रोफेशनल सर्विस चाहते हैं तो फोन करें कुलविंदर गुलेरिया को 647-218-0726, दैट इज 647-218-0726।
5: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 647-702-2023 647-702 वी दे।
6: लाइसेंस नंबर 10394।
7: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है। 12x30 feet दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा, बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222।

0: गल बात या सुझाव प्रोग्राम के बारे कुछ दसना हो मेरे तक पहुँचता करना जी प्रोग्राम होर वधिया बनाने विच मेरी हेल्प करनी है तो 647-234-6000 मेरा फोन नंबर है 6472-3460000 नंबर पर गलबात कर लियो जी तो घर में पेंट करवाना तो रफ्तार पेंटिंग 647-996-5630 ते कॉल कर सकते हो शो दे विच एडवरटाइज करना हो अपने बिजनेस नू ते नंबर है जी 647-234-6000 6472-3460000 बहुत शुक्रिया कदों ओनरशिप नहीं है थोड़े को मैं कल किसी ने गल कर ली सी मॉर्गेज के रिगार्डिंग सी वैसे तो एक्सप्लेन आप नैक्सट वीक करेंगे जे वैसे कहें तुम वाइफ हो तो थानू किसी चीज़ की ओनरशिप की लोड़ नहीं होंगी घर की भी ओनरशिप नहीं हैगी पर फिर भी घर के मालिक कौन है तुसी है कि खुश रहो जी पर वालों सत श्रीकाल शबा खैर अपना ख्याल रखियो शुभरात्रि
1: धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का मोहब्बत भरा सलाम आज फिर आपके दिलों पर दस्तक देने की इजाजत चाहता हूं ताकि आपको आह के साथ वाह भी कहने के लिए अपनी पेशकारी के जरिए आपको मुतासिर कर सकूं तो चलते हैं शेर व शायरी की अजीब दुनिया में अजीब मुख्तलिफ रंगों में जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां का राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना हाथ जब उससे मिलाना तो थोड़ा दबा भी देना वैसे इस खत में कोई बात नहीं है वैसे इस खत में कोई बात नहीं है फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो बाद में इसे जला भी देना वैसे तो नशा बुरी चीज है पर दानिश से शेर सुनना है तो थोड़ी पिला भी देना बात पीने की चली है तो कहते हैं कि शायर दीवाने और रिंदों की सोच अजीब सी होती है या यूं कहिए कि एक जैसी होती है हाँ रिंद जब पीता है तो फिर खुद के करीब होता है तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही गजल गुलुकार है जगजीत सिंह।

भी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है, सच्ची झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है। नाम तेरा है चंदन जैसा, दिल मेरा महका देता है। खारों के साए में भी देखो वो फूल खिला देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। चांद बड़ा है जालिम दानिश, उसकी याद दिला देता है। समीन चांद को देखना किसे पसंद नहीं, चांद भी एक महबूब की तरह होता है। जिसको देखना तो मुमकिन है मगर पाना उतना ही नामुमकिन। तो बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूँ, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।